0: के हवाई जहाज से बने पर आए, हवाई जहाज से बने पर आए, हवाई जहाज से बने पर आए, बने पर आए, बने पर आए।
1: Studio Zef, la radio pour aller au boulot ou au dodo.
2: Studio Zef.